मुनी 90.4 के LE कनसु पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: तो सह पंजरे अस्ति।
1: पंजरस्य कोणे सिंह अपि अस्ति। तस्याः पार्श्वे सिंह शावकः अपि अस्ति।
0: सिंहः वनराजः, वनस्य राजा। सिंहः मृगराजः, मृगाणां राजा।
1: आम्, तत्र पश्यतु गजः अटति। गजः पंजरस्य अन्तः किमर्थं नास्ति?
0: गजः जनान् दृष्ट्वा किमपि न करोति, अतः पंजरस्य अन्तः नास्ति।
1: तस्य पंजरस्य अन्तः कः अस्ति?
0: सः व्याघ्रः। पंजरस्य समीपं गत्वा पश्यामः।
1: समीपं गच्छामः।
0: जानाति खलु व्याघ्रः अस्माकं राष्ट्रियपशु इति?
1: आम्, जानामि।
0: अस्माकं राष्ट्रियपक्षी कः?
1: मयूरः। पश्यतु तत्र पक्षिणः सन्ति।
0: तत्र गच्छामः। अत्र शुकाः सन्ति, बकाः सन्ति, हंसाः सन्ति।
1: हंसाः जले तरन्ति।
0: पश्यतु एषः उलुकः, एषः दिवान्धः। दिवाकाले उलुकः द्रष्टुं न शक्नोति।
1: हंसः सरस्वत्याः वाहनम्, उलूकः लक्ष्मीदेव्याः वाहनम् इति मम सखी उक्तवती। तत् सत्यं किम्?
0: अहो पञ्चवादनं, गृहं गच्छामः, चलतु।
2: उत्तमं, सम्भाषणम् अवगतवन्तः किम्? तर्हि सम्भाषणस्य अन्ते अनुजा अग्रजम् एकं प्रश्नं पृच्छति। सा पृच्छति, लक्ष्मीदेव्याः वाहनम् उलूकः अस्ति, सरस्वतीदेव्याः वाहनं हंसः अस्ति, एतत् सत्यं किम्? बच्चों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, बड़ों के भी मन में आते हैं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में एक सभा में भारतीय संस्कृति का महिमा गा रहे थे, तब किसी अमेरिकावासी ने उपहास पूर्वक यही प्रश्न किया था। उसने कहा था, कैसे विचित्र है आपकी भारतीय संस्कृति, आपके धनदात्री लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू और ज्ञानदात्री सरस्वती का वाहन होता है हंस। क्या भारत के उल्लू और हंस हाथी घोड़े जैसे हैं? उस अमेरिकावासी का प्रश्न सुनकर सब लोग हंस पड़े थे। तब स्वामी विवेकानंद जी ने धीर मधुर स्वरों में उसके प्रश्न का उत्तर दिया था। वे बोले, सज्जनों, आप वस्तुओं का सिर्फ बाह्य रूप देख के विचार करते हैं, वस्तुओं का अंतर रूप, सत्य रूप क्या है आप नहीं जानते, इसलिए हंसते हैं। भारतीय संस्कृति अंतरात्मा को मन, बुद्धि, अहंकार ऐसे बाह्य रूपों से श्रेष्ठ मानती है। उल्लू और हंस हम प्रतीक रूप से लेते हैं। जब मनुष्य धन का दास बनता है तो वह उल्लू के जैसा दीवान्ध बन जाता है। गर्व से अंधा बना मनुष्य सत्य का प्रकाश नहीं देख सकता है। हमें समृद्धि प्राप्त हो जाए तो अंधा बनने से बचना चाहिए। हंस विवेक का प्रतीक है, वह दूध और पानी अलग करना जानता है। यथार्थ ज्ञान हो तो मनुष्य क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सत्य क्या असत्य, क्या शुभ और क्या अशुभ जान सकता है। हमें हंस के जैसे विवेक युक्त बनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का उत्तर सुन के सारी सभा बहुत हर्षित हो गई थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का जय जयकार किया। धन्यवाद। तो लक्ष्मी देवी का वाहन उल्लू है, सरस्वती देवी का वाहन हंस है, तो इसके पीछे क्या सत्य है, क्या जानना चाहिए, इन प्रतीकों से हमें क्या सीखना चाहिए, यह हमें जरूर सोचना चाहिए। अस्तु, अब अंत में एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्राणी क्या है? अभ्यासः अभवत्। अभ्यासस्य अनन्तरं राम रक्षा स्तोत्र पठनम्। श्लोक संख्या 23 तः 30 पर्यन्तम्।
3: श्री गणेशाय नमः।
4: श्री गणेशाय नमः।
3: वेदांत वेद्यो यज्ञेश।
4: वेदांत वेद्यो यज्ञेश।
3: पुराण पुरुषोत्तमः।
4: पुराण पुरुषोत्तमः।
3: जानकी वल्लभ श्रीमान।
4: जानकी वल्लभ श्रीमान।
3: अप्रमेय पराक्रमः।
4: अप्रमेय पराक्रमः।
3: इत्येतानि जपन् नित्यम्।
4: इत्येतानि जपन् नित्यम्।
3: मद्भक्त श्रद्धयान्वितः।
4: मद्भक्त श्रद्धयान्वितः।
3: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्।
4: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्।
3: सम्प्राप्नोति प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामम् पद्माक्षं पीतवाससम् स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नरः
4: रामं
3: लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरम्।

0: लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं
1: सीतापतिं सुन्दरं
0: सीतापतिं सुन्दरं
1: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं
0: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं
1: विप्रप्रियं
0: धार्मिकं
1: राजेन्द्रं
0: सत्यसंधं
1: दशरथतनयं श्यामलं
0: शांतमूर्तिं
1: वन्दे लोकाभिरामं
0: रघुकुलतिलकं
1: राघवं रावणारिं
0: रामाय रामभद्राय
1: रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय
0: सीताय

0: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ

0: अतिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केलवेणू धुणी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: कर्मठता का महत्व. कोई हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे, दिन में ऊंचे ऊंचे सपने देखता रहे, कुछ करे नहीं, तो क्या निठल्ला बने रहने से तकदीर का सितारा चमकेगा? भाग्य पर भरोसा तो केवल कर्महीन लोग ही करते हैं. परिश्रमी कर्मठता के बल पर अपनी तकदीर की तस्वीर खुद बनाता है. असंभव को संभव कराने वाला, महानता के शिखर पर पहुंचाने वाला अद्भुत गुण है कर्मठता. कर्मठता अर्थात बाधाओं से न डरते हुए कार्य के लिए सदा तत्पर रहना. कर्म को ही अपना धर्म मानकर कर्म करते रहना कर्मठता है. कर्मठता उद्योगी पुरुष का श्वास है. जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ही कर्मठता के बिना मनुष्य जन्म निरर्थक है. इस जादुई गुण से ही अंतर में छिपी शक्तियां जागृत होती है. चैतन्य शक्ति से ही जीवन में नवीनता आकार लेती है. मानव की चैतन्यता उसकी कर्मठता से ही प्रमाणित होती है और कर्मठता से ही नव सृष्टि का निर्माण और सृजन भी संभव है. अकर्मण्यता और निरस्ता के त्याग का नाम ही है कर्मठता. अकर्मण्य व्यक्ति हाथ पर हाथ धर करके बैठा रहता है और सदा नसीब का हवाला देता रहता है, लेकिन कर्मठ व्यक्ति पत्थर को तोड़कर भी पानी निकाल लेता है. कर्मठता आलस का नाश करती है. जहाँ आलस नहीं वहाँ निश्चित ही उमंग उत्साह होता है. सतत विकास और उन्नति के लिए चिर उमंग की सख्त जरूरत होती है. केवल नीत नए ढंग से कार्य करने से उमंग उत्साह में बढ़ोतरी होती है. कर्मठता से ही उमंग उत्साह की सरिता प्रवाहित होती है. आधुनिक उद्योग का विकास पिछले सदी के महापुरुषों की कर्मठ पुरुषार्थ का मधुर फल है. कर्मठता मनुष्य को उद्योगी बनाती है. मानव जीवन का हित उद्योगी बने रहने में है. रिलायंस उद्योग समूह के संस्थापक धीरूभाई अंबानी कर्मठता के जीवंत स्तंभ थे. अपनी कर्मठता के बल पर उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि शून्य से शुरुआत कर इंसान नया जहां बसा सकता है. अतः कर्मठता को अपनाइए और नया जहां बसाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.
0: आपल्या जीवनात अनेकदा परिस्थिती आपल्या मनाप्रमाणे घडत नाही. काही वेळा मेहनत करूनही अपेक्षित यश मिळत नाही. काही नाते आपल्या मनाप्रमाणे राहत नाहीत. काही प्रश्नांची उत्तरे लगेचच मिळत नाहीत. अशा वेळी अध्यात्म आपल्याला एक महत्वाची गोष्ट शिकवते. परिस्थितीवर नेहमी आपले नियंत्रण नसते, पण परिस्थितीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आपल्या हातात असतो. भगवद्गीतेच्या कर्मयोगाचा संदेश आपल्याला सांगतो की आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे करणे महत्वाचे आहे. परिणामाबद्दल अतिचिंता न करता योग्य कर्म करत राहणे हीच जीवनाची साधना आहे. आपण मंदिरात जाऊन देवाला नमस्कार करतो, पण त्याचबरोबर आपल्या घरातील आई वडिलांचा आदर करणे, ज्येष्ठांची काळजी करणे, गरजू व्यक्तीला मदत करणे, एखाद्याला धीर देणे आणि पर्यावरणाची काळजी घेणे हे देखील ईश्वर सेवेचेच रूप आहे. संत परंपरेत वारंवार सांगितले गेले आहे की भक्ती ही केवळ ओठांवर नसून आचरणात दिसली पाहिजे. आज रविवारच्या दिवशी कुटुंबातील सर्वांनी काही वेळ एकत्र बसावे. मोबाईल आणि इतर डिजिटल साधने बाजूला ठेवून एकमेकांशी संवाद साधावा. घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या आठवणी ऐकाव्यात, कारण ज्या घरात प्रेमाचा संवाद असतो त्या घरात आनंदाला वेगळ्या निमंत्रणांची गरज नसते. हे होते आजचे आध्यात्मिक विचार आणि आता वेळ झाली एक छानसं भक्तिगीत ऐकण्याची. तुम्ही ऐकत राहा 90.4 FM KLE कणसू भक्तिमय.

0: वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: प्रयास के केंद्र में मानवता।
2: आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: I would like to say that the outcome document.
3: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
8: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद डीआरडीओ का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
9: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
10: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
0: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज़।
9: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के रुख को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्य के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता, साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी, 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद, जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी, कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी, डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार, एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा। आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें, हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा, संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसू। पहिल्यांदाच हुबळी मध्ये नवीन व युवा उद्योजक, स्टार्टअप व्यावसायिक तसेच स्वयंरोजगार सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक सुवर्ण संधी। तुमच्या कल्पनांचे उत्पन्नामध्ये रूपांतर करा। तुमच्या स्वप्नातील व्यवसायाचा भक्कम पाया घालण्यासाठी आणि उद्योजकीय कौशल्य विकसित करण्यासाठी विशेष एक दिवसीय स्किल डेव्हलपमेंट कार्यशाळा Empower 365, कल्पनेपासून कंपनी पर्यंत, रविवार दिनांक 18 ऑक्टोबर 2026 रोजी हुबळी येथे। यशस्वी आणि फायदेशीर उद्योजक होण्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकसित करण्याची संधी गमवू नका। आजच आपले नाव नोंदवा। नोंदणीसाठी संपर्क 9513519666। गिकोना सक्सेस स्ट्रॅटेजी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसू। गणपति विशेष कार्यक्रम में मनीष आपका स्वागत करती है। आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे भूपेंद्र शेरवी को, जो केली श्री बीएम के आयुर्वेदा महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी है। गणपति और अध्यात्म से आयुर्वेद तक, इस विषय पर हम उनसे सुनेंगे। तो चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हम प्रोग्राम शुरू करते। आप सुनते रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसू।
1: नमस्कार, वेणु ध्वनि के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं भूपेंद्र शेरवी, केली श्री बीएम कंकनवाड़ी आयुर्वेदा महाविद्यालय के अंतिम वर्ष का छात्र, आप सभी को गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम बात करेंगे गणपति और अध्यात्म से आयुर्वेद तक। हम गणपति बप्पा का उत्सव हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन के अंदर गणपति बप्पा से कौन कौन सी शिक्षाएं अपना सकते हैं और आज के समाज में हमारे चारों तरफ चल रही सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नई सोच हो, नया विश्वास हो, हर कदम पर बप्पा का आशीर्वाद हो, मुश्किलें चाहे जितनी भी आए राहों में, हर चेहरे पर जीत की मुस्कान हो। दोस्तों, गणपति बप्पा को हमेशा कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं कि जो भी कार्य हम शुरू कर रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। इसी विषय के ऊपर हम आज गणपति जी के अध्यात्म से लेके आयुर्वेद तक उनका संबंध देखेंगे और उनसे क्या क्या शिक्षाएँ हमको लेना है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणपति जी की आराधना में, उनकी पूजा में हम बोलते हैं, गजाननम भूत गणादि सेवितम कफितम जम्बूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। साथियों, इसका भावार्थ होता है कि मैं उन विघ्नेश्वर पार्वती के पुत्र के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जो हाथी के समान मुख वाले हैं, भूत गणों आदि द्वारा सेवित हैं और जो केथा तथा जामुन जैसे स्वादिष्ट फलों का सेवन करते हैं एवं प्राणियों के शोक का विनाश करते हैं। साथियों, इस आराधना के अंदर हमको कपित और जम्बू फल का जो है उदाहरण देखने को मिलता है। और अगर भगवान गणपति जी को सबसे प्रिय फलों के अंदर दुर्वा, कपित और जम्बू फल का भोग हम नित्य लगाते हैं, इसके पीछे आयुर्वेद क्या कहता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जम्बू फल और चारू फल, जैसा हम सबको पता है कि गणपति भगवान को मधुर रस की मिष्ठान मिठाइयाँ बहुत ज्यादा पसंद है, उनको मोदक का भोग नित्य लगाया जाता है। तो ये जो कपित और जम्बू फल है, आयुर्वेद की दृष्टि में इनको आमहर लेखन प्रॉपर्टी और ये कफ दोष का शमन करने वाले होते हैं, जिससे कि जो भी प्रमेह होता है, प्रमेह की चिकित्सा के अंदर जम्बू और कपित के जो फल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये नित्य भगवान को भोग के रूप में लगाए जाते हैं, जिनसे कि उनको प्रमेह जैसी व्याधि ना हो। दूसरा आता है दुर्वा। दुर्वा का भी हम उन भगवान श्री गणपति को चढ़ाते हैं। अब आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो पूरे एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों को हम 6 ऋतुओं के अनुसार बांट देते हैं। और हम सभी को अगर स्वस्थ रहना है तो उन्हीं ऋतुओं के अनुसार अपन को अनुकूलित होना पड़ेगा। तो जो हम गणपति जिस महीने में अभी हम मना रहे हैं, ये आयुर्वेद की दृष्टि से एवं हिंदू सभ्यता की दृष्टि से ये शरद ऋतु का समय है। और आयुर्वेद के अंदर हम देखें तो शरद ऋतु के अंदर पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो दुर्वा का जो प्रभाव है वो शीतल प्रभाव में होती है और ये जो है अग्नि को शांत करने वाली होती है, शरीर के अंदर जो भी दाह है उनको शांत करने वाली होती है। तो दुर्वा का भी भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। इसके पीछे एक आध्यात्म कहानी भी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि एक समय की बात है, गणपति भगवान ने अनल असुर नामक असुर को विनाश करने के लिए जब उनको पूरा निगल लिया था तो वो अपनी अग्नि से जो भगवान के पेट के अंदर दाह उत्पन्न कर रहा था, तो उस दाह से निजात पाने के लिए एवं उस दाह की चिकित्सा या शमन करने के लिए उनको उस समय दुर्वा औषधि दी गई थी। तो ये जो दुर्वा है, इस पर्टिकुलर इस विशिष्ट ऋतु के अंदर हमको दुर्वा का यूज करने का महत्व मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे गणपति बप्पा के, उनके शरीर के अंगों के बारे में। और गणपति जी का स्वरूप अपने आप में अनेक गहरे संदेशों को सिमटे हुए है, चाहे उनका विशाल मस्तक हो या उनके बड़े कान हो, छोटी आंखें हो या उनका वाहन मूषक हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्रतीकों के पीछे छिपी शिक्षाएं आज के आधुनिक जीवन में हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उनके बड़े मस्तक से। साथियों, जिनका मस्तक बड़ा होता है ऐसा माना जाता है कि वे व्यक्ति, वे पुरुष जो है नेतृत्व करने में कुशल होते हैं, एवं ऐसे लोगों की बुद्धि विस्तृत विचार करने वाली होती है और वो एक ही विचार पर बहुदिशीय आकलन करने वाले होते हैं, अर्थात वो एक सोच को कई अलग अलग दिशाओं से सोचते हैं एवं उसके बाद ही वो हमारे लिए अनुकूलित है या नहीं है इसका विचार करके अपने जीवन के अंदर उसको अपनाते हैं। साथियों, बड़ा मस्तक हमको ये संकेत देता है कि हमें कुछ भी निर्णय लेने से पहले या कार्य करने से पहले उस पर विस्तृत विचार करना चाहिए, उसके आज होने वाले प्रभाव, कल होने वाले प्रभाव और भविष्य में होने वाले प्रभाव हमको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, वो हमारी मानसिक शांति को, हमारे स्वास्थ्य को एवं हमारे समाज को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, इन सब का विचार करने के पश्चात ही हमको वो कर्म करना चाहिए। अगला हम बात करते हैं गणेश जी के बड़े कान से हमको क्या शिक्षा मिलती है। गणेश जी के बड़े कान हमें ये संदेश देते हैं कि हमें अपनी पूरी सजगता एवं एकाग्रता से ज्ञान पूर्वक तथ्यों का श्रवण करना चाहिए, जिससे हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उस सम्यक ज्ञान से हम जो कर्म करेंगे वो भी निष्फल कभी नहीं होंगे। साथियों, आज के संदर्भ में हमारे आसपास विभिन्न माध्यम उपस्थित हैं जिनसे हमको विभिन्न प्रकार के विचार मिलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो समाचार चैनलों के माध्यम से हो, चाहे वो भक्ति के चैनलों के माध्यम से हो। आज हमारे पास आने के लिए बहुत सारे विचार अलग अलग रास्तों से आते हैं, परंतु चाहे आप कोई सी भी आयु वर्ग के हैं, चाहे आप वृद्ध हैं, चाहे आप बाल हैं, चाहे आप युवा हैं, हम सभी को उन सभी की सुनना चाहिए और करना अपने मन के हिसाब से ही चाहिए कि वो जो सूचनाएं हैं वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कितनी ज़्यादा सही है, उसके पश्चात ही हमको जो है लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हमको कर्म करने चाहिए। अगला हम बात करने जा रहे हैं गणेश जी की छोटी और प्यारी सी आँखें। छोटी आँखें हमें महत्वपूर्ण एक संदेश देती है कि चिंतनशील एवं गंभीर प्रवृत्ति, ये जो व्यक्ति होते हैं, जो भी पुरुष होते हैं जिनकी आंखें छोटी होती है वो चिंतनशील एवं गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। ये छोटी आंखें हमें सूक्ष्मता से एवं विस्तृत परखने का संदेश देती हैं। छोटी आंखें हर एक विचार को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता से पहचानने का संदेश देती है। क्योंकि साथियों, अगर हम कोई भी निर्णय जल्दबाजी में, क्रोध में, आक्रोश में, भाव में आके और मन के विपरीत अवस्थाओं में अगर हम ये निर्णय ले लेते हैं तो हमको उनका फल अनुकूलित नहीं मिलता है और आखिर में जाके हमको उससे जो है दुष्परिणाम ही प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद भी सभी वैद्यों को एवं सभी मनुष्य को भी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये निरंतर संदेश देता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं, आप जो भी सुन रहे हैं, उन सभी को सूक्ष्मता से परखिए और उसके बाद ही अपने जीवन के अंदर अपनाइए। क्योंकि हम भोजन जो ग्रहण करते हैं वो हमारी शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल, शारीरिक ऊर्ज को बढ़ाने को काम आता है, लेकिन जो हम हमारी आंखों से, जो हम हमारे कानों से सुनते हैं वो हमारी बुद्धि के लिए भोजन होता है और जैसा हम श्रवण करेंगे, जैसा हम देखेंगे उसके अनुरूप ही हम भविष्य के अंदर निर्णय लेंगे। साथियों, ये आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि हम किस प्रकार के माहौल के अंदर हम रहते हैं और किस प्रकार का हम श्रवण और चीजों को देखते हैं। हम आगे बात करेंगे श्री गणपति बप्पा की सूंड के बारे में और देखते हैं ये हमको क्या संदेश देती है। साथियों, श्री गणेश या लंबोदर की ये चंचल सूंड हमें सिखाती है कि मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार खुद को अनुकूलित करना चाहिए। ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि परिस्थिति हमेशा हमारे अनुकूल नहीं रहती है, चाहे हम एक विद्यार्थी के रूप में देखें, हम एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में देखें या हम या अभिनेता के रूप में देखें। हमेशा परिस्थिति हमारे अनुकूलित नहीं होती है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हम हमेशा अनुकूल परिस्थिति के लिए ही कार्य करते हैं, परंतु फिर भी परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती है। यहाँ पर आवश्यक ये है कि जैसी भी परिस्थिति हमारे पास है या हमारे सामने है, हम उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को उसमें ढाल लें और उस परिस्थिति का सामना करते हुए सजगता से उसका निर्णय निकालें, उसका समाधान निकालें, तभी हम एक प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि बड़ा जब तूफान आता है, जब भयंकर तूफान आता है, तो उस तूफान के जाने के बाद केवल वो वृक्ष ही खड़े रह पाते हैं जो वायु के वेग की दिशा के अंदर अपने आप को मोड़ लेते हैं, जो सीधे खड़े रहते हैं, जो सजगता से, जो कड़कपन से खड़े रहते हैं, वो उस हवा के बहाव के कारण टूट जाते हैं और उनका विनाश हो जाता है। ये हमको संदेश देता है कि प्रकृति भी उन चीजों को अपनाए रखती है जो परिस्थिति के अनुकूलित होना जानते हैं। जो परिस्थिति के अनुकूल नहीं होगा, जो परिस्थिति के विपरीत जाना चाहता है, जो वायु के वेग के, पानी के वेग के एवं भावनाओं के वेग के, सोच के वेग के, कर्म के वेग के विपरीत जाना चाहता है, उन सब का बहिष्कार प्रकृति द्वारा आज नहीं तो कल कर दिया जाएगा। साथियों, हम सभी को ये संदेश अपने जीवन में निश्चित रूप से अपनाना चाहिए कि जो भी परिस्थिति हो, हम उसके अनुकूलित होकर अपनी पूरी सजगता से, अपनी पूरे सौभाग्य से, अपने पूरी बुद्धि से उसका निवारण करेंगे और उस परिस्थिति के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अंत में हम देखते हैं कि भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक है। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं अध्यात्म में भी प्रचलित हैं और आजकल उसका जो अनुकूलन उदाहरण हम अपने जीवन के अंदर भी जोड़ सकते हैं। मूषक अर्थात हमको संकेत देता है तर्क का या चंचलता का, या अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जरूरत से ज्यादा सोचने का। श्री गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, तो अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ें तो हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर शिक्षा मिलती है। मूषक हमेशा कुछ न कुछ काटता रहता है, वो कभी भी शांति से नहीं बैठता है, वो कभी उछल कूद करेगा, नहीं तो कभी किसी न किसी चीज को काटता रहेगा। यानी अगर हम आज के संदर्भ में समझें, यानी हम आज के समाज के संदर्भ में समझें, तो जरूरत से ज्यादा सोचने की अवस्था। साथियों, आज हमारे समाज के अंदर जो सबसे बड़ा हमारे सामने परिस्थिति उपलब्ध है, वो है जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण मानसिक अवसाद एवं मानसिक दुख। और श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और वो बुद्धि के देवता उस चंचल रूपी मूषक के ऊपर विराजमान है। हमको ये संदेश मिलता है कि हमको अपनी बुद्धि पे, हमको अपनी जरूरत से ज्यादा सोचने की, जरूरत से ज्यादा चिंता करने की इस आदत से छुटकारा पाने के लिए हमको हमारी बुद्धि या विवेक से काम करना पड़ेगा। आज के समाज के अंदर और आज के इस आधुनिक दौर के अंदर हर कोई व्यक्ति अपनी कमाई के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए एवं ऊंचाइयों को चूमने के लिए निरंतर मेहनत करते रहते हैं और इसी मेहनत के दौर वो ये भूल जाते हैं कि उनका जो संयम है उनकी बुद्धि से जा चुका है। वो एक मशीन की तरह आखिर में काम कार्य करने लगते हैं जो उनके स्वास्थ्य के भी प्रतिकूल है। वो स्वास्थ्य शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, दोनों के लिए वो प्रतिकूल है। हमको ये चाहिए कि हम अपनी बुद्धि से, सजगता से, योग आदि का अभ्यास करके अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करें, जिससे कि हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें। आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ की परिभाषा केवल शारीरिक स्वस्थता तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद की दुनिया के अंदर और आयुर्वेद हम सभी को यह संदेश देता है कि स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दोनों भावों से व्यक्ति का स्वस्थ होना होता है। आज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ की डेफिनेशन के अंदर भी वो हर एक व्यक्ति से फिजिकल और उनकी मेंटल स्टेट के बेस के ऊपर ही उनको स्वस्थ है या नहीं है इस बात की प्रमाणिकता देते हैं। हम सभी को गणपति बप्पा से ये सारे शिक्षाएं हमको अपने जीवन के अंदर अपनानी चाहिए, जिससे हम हमारे जीवन के अंदर हो रही बहुत सारी समस्याएं जो हमारे पास समाधान नहीं है या जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, उन सब का समाधान हम कर सकते हैं। और आयुर्वेद में सबसे बड़ा जो सुख माना गया है वो आरोग्य को माना गया है। अगर व्यक्ति आरोग्य है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है, तो वो सबसे ज्यादा सुखी है, वो सबसे ज्यादा प्रसन्न है, वो सबसे ज्यादा खुश है। मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं, और मैं भगवान से गणपति बप्पा से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी के स्वास्थ्य को बनाए रखें और आप सभी ये सीख अपने जीवन के अंदर अपनाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।
0: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। भूपेंद्र शेर भी हमारे साथ थे, जो केली श्री बीएम के आयुर्वेदा महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं। गणपति और अध्यात्म से आयुर्वेदा तक, ये उनका विषय था। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा। नंबर है 9019904904। ये है केली वेणुधोनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

0: minds to build a more thoughtful and united society. As we welcome Ganpati Bappa into our institutions, may we also welcome the virtues he embodies into our own lives. Clarity in thought, humility in learning, courage in adversity, and kindness in every action. May Lord Ganesha bless every student, teacher, and institution with wisdom, good health, harmony, and success in every new beginning. Thank you for tuning in to Venudwani FM. This is Smita Patil from KLE Sri BMK Ayurveda Mahavidyalaya, wishing you and your family a joyful, meaningful, and a blessed Ganesh Chaturthi. Ganpati Bappa Morya, Mangal Murti Morya.
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केएलए वेणुधुनी 90.4 एफएम पे सुन रहे थे। आयुर्वेदा कॉलेज में गणेशोत्सव कैसे मनाया जाता है उसके बारे में हमने सुना। स्मिता पाटिल हमारे साथ थी जो बीएमएस की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है केएलए श्री बीएमके आयुर्वेदा कॉलेज में। ऐसे ही हमारे नए नए प्रोग्राम सुनने के लिए आप ट्यून इन रहना केएलए वेणुधुनी 90.4 एफएम पे। नमस्कार।

0: वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज
1: अध्याय विद द मिडडे न्यूज।

वहीं आती है हमारे शो बी रिलैक्स की बात, जो आता है ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 के LE कनसू पर। और मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा हैंडसम दोस्त यानी कि आरजे आयुष। और मैं हूं आपसे करने वाला आज बात कुछ एक ऐसे टॉपिक पर जिससे सबका मूड एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। भैया देखिए, हमारी इंडियन फैमिलीज में तो कहीं बाहर जाने का मतलब ही खाना होता है, और फिर आपको पता ही है इंडियन फूड से अच्छा और कुछ भी नहीं। तो आज करेंगे बात हम आज इसी टॉपिक पर जिसका नाम है द क्रूजींस ऑफ इंडिया। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।

0: one more time to your favorite show, Be Relaxed, और आपने ट्यून किया है वेनु ध्वनी 90.4 KLE कनसु। हमारी बात चल रही है आज इंडियन क्रूजींस पर। दोस्तों देखिए, भारत जो है वो भूमि है कल्चर्स की, ट्रेडिशंस की, रिश्तों की, और इस इनक्रेडिबल डेज की डिशेज जो है वो रिफ्लेक्शन है यहाँ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मल्टी कल्चर इन्फ्लुएंसेस की। फ्रॉम द बुसिंग स्ट्रीट ऑफ मुंबई टू द सीनरी बैकवर्ड्स ऑफ केरला, द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया आर एज वेरीज एज इट्स लैंडस्केप्स। दोस्तों हमारे भारत देश में हर त्योहार, हर इवेंट या फिर हर खुशी के लिए एक अलग और स्पेसिफिक डिश है जो पूरा परिवार सेलिब्रेट करने के बाद एंजॉय करता है, और फिर चाहे वो पूरन पोली हो या बिरयानी, हमारे हाथ जो है रोके नहीं रुकते हैं। लग रहा है मेरे साथ साथ आपकी भी जीभ ललचा रही है, तो चलिए इस ललचाहट को थोड़ा और बढ़ाते हैं और करेंगे बात आगे इसी टॉपिक पर और सुनाएंगे आपको कुछ जबरदस्त गाने। तो बने रहिए हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।
1: झूठे मूठे

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

Hello, welcome, welcome, welcome back, ladies and gentlemen, and people of all ages to our prime show, Be Relaxed, जिससे सुनकर आप हो जाते हैं एकदम relax और stress free, और वो तो होंगे ही क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं Indian food, यानी Indian खाने के ऊपर, Indian cuisines के ऊपर। दोस्तों, जब भी Indian खाने की बात आती है, वहाँ flavors और मसाले का जिक्र बिल्कुल होता है, क्योंकि यही वो राज है जो हमारे खाने को एकदम अलग और special बनाता है। At the heart of Indian cuisines lies its remarkable uses of spices. एकदम सुगंधित मसाले जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, ये इलायची, इन सबको अलग अलग कॉम्बिनेशन में ब्लेंड करके यूनिक फ्लेवर्स बनाए जाते हैं जो हम यूज करते हैं हमारे इंडियन डिशेस में। अब देखिए, इंडिया में इतने सारे रीजन हैं और हर जगह अपने अपने तरीके से लोग मिश्रण बनाते हैं और स्वाद का आनंद लेते हैं, यानी मजा लेते हैं। आप में से भी कई लोग मसाले के बहुत ज्यादा शौकीन होंगे, कभी खाने में चाट मसाला तो कभी गरम मसाला तो कभी, खाने को चटपटा बनाने के लिए नमक और नींबू का इस्तेमाल। आखिर भैया, स्वदेशी तो हम है ही। चलिए बताऊंगा मैं आपको कुछ रीजनल डाइवर्सिटीज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं करूंगा आपका मनोरंजन और आपको सुनाऊंगा एकदम धमाकेदार संगीत। तो सुनते रहिए मेरे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। और आप ट्यून कर चुके हैं बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, और मैं हूं आप सभी का प्यारा RJ आयुष। दोस्तों, इंडिया के वास्ट होने का पता लगाया जा सकता है उसकी फूड वेराइटीज और फूड डाइवर्सिटी से, क्योंकि हर जगह की एक अपनी फेमस डिश होती है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट रीजन हैज इट्स ओन कल्नररी आइडेंटिटी, जहाँ नॉर्थ में आपको मिल जाएगी एकदम छठाकेदार बिरयानी और गरमा गरम कबाब। वहीं साउथ आपको ऑफर करता है राइस मेड डिशेस लाइक इडली डोसा, जिसको सर्व किया जाता है नारियल की चटनी और सांभर के साथ। जी मैं पानी आने लगा है लगता है। द वेस्टर्न कोस्ट गिव्स अस सी फूड रिच डिलाइट्स लाइक गोवन विंडोल्स, और वहीं ईस्ट में मिलती है फ्लेवरसम फिश करीज एंड स्वीट्स लाइक रसगुल्ला। इन सारी डिशेस को सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। चलिए, आप अपनी फेवरेट डिशेस के बारे में भैया कर दीजिए अपने घर में फरमाइश, और बने रहिए हमारे साथ हमारे शो बी रिलैक्स में ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द शो। और आपकी फरमाइशों के साथ हम बात करेंगे आज कुछ स्ट्रीट फूड्स के बारे में। और आपने ट्यून कर लिया है बलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु और जे आयुष के साथ। बात करते हैं स्ट्रीट फूड एक्स्ट्रावेगेंजा की। इंडियन स्ट्रीट्स कम अलाइव विद अ वाइब्रेंट असॉर्टमेंट ऑफ स्ट्रीट फूड, जैसे चटपटी चाट, पानीपुरी, वड़ा पाव, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे हम लोग और टूरिस्ट काफी ज्यादा पसंद करते हैं और एंजॉय करते हैं। दिस क्विक बाइट्स कैचेस द एसेंस of Indian flavors, offering a burst of spices, textures and वो अनुभव जिसको आप कभी भी नहीं भुला सकते। भैया ये सब चीज़ अगर आप खाते हैं तो आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और खुशम खुश हो जाता है। दोस्तों हम लोग खाने से इतना जुड़ चुके हैं कि भैया कोई भी डिश के बारे में अगर हम उसका नाम सुनते हैं हमारी हमें उसका टेस्ट आने लग जाता है। तो ये अनोखी मेंटालिटी बन चुकी है ना। आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा, आप लोगों के भी कई सारे स्ट्रीट फूड फेवरेट होंगे। आजकल तो भैया हर चीज घर पर ही एक्सपेरिमेंट हो जाती है, लेकिन भी हम लोग चाहते हैं कि भैया हम लोग बाहर का खाना खाएं। अब देखिए खाने की बात हो रही है और साथ में मनोरंजन ना हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मैं सुनाने वाला हूँ आपको कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। इतने प्यार के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय व्यंजनों के बारे में, यानी इंडियन क्विजींस पर। दोस्तों, रीजनल और स्ट्रीट फूड की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं उन रिचुअल्स की, ट्रेडिशंस की, यानी अलग अलग ओकेशंस की जहां हम अलग अलग तरह का खाना बनवाते हैं। दोस्तों, इंडियन फूड इज नॉट ओनली अबाउट टेस्ट, बट इट्स अबाउट द रिचुअल्स दैट सराउंड्स इट। फ्रॉम द एलोबोरेट फीस्ट ऑफ वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स टू सिंपल शेयरिंग अ मील विद अ फैमिली, फूड भी उन चीजों में से एक हो गया है जो हमें एकदम जोड़े रखता है, साथ में कनेक्टेड रखता है। और कई ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं जो पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन। भैया, अगर कोई नानी है या कोई दादी है, उन्होंने कोई डिश की रेसिपी एक्सप्लोर करी है, वो जाती है उनकी बेटी को, देन उनकी बेटी को, तो जनरेशन में पास ऑन होती है, विच प्रिजर्व्स नॉट ओनली द ओरिजिनल फ्लेवर्स बट द टेस्ट, ऑल्सो द स्टोरीज एंड द हेरिटेज ऑफ पीपल। और दोस्तों, जैसे कि आप भी जानते हैं, हमारा खाना सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। कई सारे मसाले और फूड तो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं जिससे हर इंसान उसका लुफ्त उठा सकता है। और अब आप लुफ्त उठाइए कुछ जबरदस्त गानों का और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।

हेलो, क्या बात है। बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और आप सुन रहे हैं वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसू विद RJ आयुष। दोस्तों, जैसे इंडियन फूड जितना स्वादिष्ट है उतना ही इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। यानी सिर्फ ये हमारे टेस्ट बड्स को ही नहीं सेटिस्फाई करता, बल्कि मसाले जैसे हल्दी या जिंजर गार्लिक इज नॉट ओनली फॉर फ्लेवर्स बट ऑल्सो फॉर देयर पोटेंशियल मेडिकल प्रॉपर्टीज। आयुर्वेदा, जिससे हम जानते हैं एंशियंट इंडियन मेडिसिन सिस्टम के नाम से, विच एम्फेसाइजेस द बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स and nutrition in meals to promote all over well-being। और दोस्तों, आजकल इंडियन डिशेस को किसी और डिश के साथ मिक्स करके अलग अलग रेसिपीज भी हर रोज बनाई जा रही है। इमेजिन अ फ्यूजन ऑफ इंडियन स्पाइसेस विद इंटरनेशनल क्विजींस लाइक मैक्सिकन, इटालियन और जापानीज। दिस ब्लेंडिंग ऑफ फ्लेवर्स क्रिएट्स एन एक्साइटिंग कल्चरल लैंडस्केप्स दैट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। सोच कर ही मजा आ रहा होगा। चलिए मजे को करते हैं एकदम दुगना और पेश करते हैं आपके लिए एकदम जबरदस्त चटाकेदार हिंदी गाने। सुनते रहिए हमारे साथ वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसू।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर और आप सुन रहे हैं हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन विनू धोनी 90.4 KLE कनसू। मैं और मैं हूँ आरजे आयुष आपके साथ हमेशा बना हुआ। और दोस्तों, जब इंडियन फूड में ट्रेडिशन और रीजन की बात आती है तो हम कैसे भूल सकते हैं उन ओल्ड टेक्निक्स को जो खाने को एकदम जबरदस्त, तगड़ा और चटाकेदार बनाती है। टेक्निक्स जैसे स्लो कुकिंग इन अ क्ले पॉट, जिसको हम लोग हांडी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग हांडी में बनाते हैं, स्पेशली बिरयानी इसमें बनाई जाती है। द आर्ट ऑफ तंदूर इन्वॉल्व्स कुकिंग इन अ क्ले ओवन, जिसमें मोस्टली तंदूरी रोटी, नान और मीट बनाया जाता है। कोस्टल डिशेस ऑफन प्रिपेयर्स यूजिंग कोकोनट मिल्क, व्हाइल इन द नॉर्थ दम कुकिंग इन्वॉल्व्स स्लो कुकिंग इन अ सील्ड पॉट टू इन्फ्यूज फ्लेवर्स। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आप भी अपने तरीके से ट्राई कर सकते हैं इन इंडियन रेसिपीज को और इनकी कुकिंग टेक्निक्स को। उम्मीद है आज का ये चटाकेदार एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपकी भूख को और ज्यादा बढ़ा दिया होगा। जल्द मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खाइए बहुत सारा इंडियन फूड और करिए अपनी हेल्थ को एकदम ठनठनाट। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4।

गुड इवनिंग दोस्तों, आप ट्यून है वेणु धोनी 90.4 के एल ई कनसुबे और यादों की बारात में मनीषा आपका देर से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात, जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे पल पल दिल के पास तुम रहती हो। धर्मेंद्र और राखी के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग जो है ब्लैकमेल मूवी से। ये मूवी आई थी 1973 में। किशोर कुमार की आवाज में कलंच आनंद जी का म्यूजिक है और गाने को लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग पल पल दिल के पास तुम रहती हो।

यादों के बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है कटी पतंग से। किशोर कुमार की आवाज में ये सॉन्ग आपके लिए, जिसके शब्द है ए शाम मस्तानी। कटी पतंग मूवी आई थी 1970 में। आरडी बर्मन का म्यूजिक है और आनंद बख्शी के शब्द। राजेश खन्ना, आशा पारेख और प्रेम चोपड़ा और बिंदु के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग ए शाम मस्तानी।

90.4 वेणु धोनी के एल ई करण सूपे आप टीओ ने यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगला गाना हम सुनेंगे दिल अपना और प्रीत पराई इस मूवी से। ये मूवी आई थी 1960 में और गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक है और गाने के शब्द है अजीब दास्ता है ये।

वेणुधुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगला गाना हम सुनेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। सफर मूवी का ये सॉन्ग है, जो मूवी आई थी 1970 में, फिरोज खान और शर्मिला टैगोर के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। तो चले सुनते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मुकेश की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है।

अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है तुम अगर साथ देने का वादा करो। हमराज मूवी का ये सॉन्ग है, जो मूवी जिस मूवी के डायरेक्टर है बी आर चोपड़ा। म्यूजिक है रवि का और गाने को आवाज दी है महेंद्र कपूर ने।

वेणुधोनी 90.4 की एल ई कनसु पे आप ट्यून है। यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगला गाना हम सुनेंगे तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। दो कलिया मूवी से ये सॉन्ग है जो मूवी आई थी 1968 में।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जिसको आवाज दी है लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी ने। गाने को लिखा है अख्तर रुमानी ने और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का। ये गाना है हसीना मान जाएगी मूवी से, जो मूवी आई थी 1968 में। तो चले सुनते बेखुदी में सनम उठ गई।

90.4 वेणु धुनी के LE कनसुपिया आप ट्यून है। यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगला जो गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है तुम बिन जाओ कहा। आपको पता है इस गाने के पीछे एक कहानी है। शशि कपूर और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये सॉन्ग जो 1969 की सुपरहिट फिल्म प्यार का मौसम इस फिल्म से है। ये गाना महान मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। इसका संगीत पंचम दायनी RD बर्मन ने दिया था, लेकिन दरअसल एक सुपरहिट बंगाली गीत का हिंदी रूप था। मुकुल दत्ता के लिखे बंगाली गीत का संगीत भी पंचम दायनी ही दिया था, लेकिन उसे गाया किशोर कुमार ने था। ये बंगाली गाना दुर्गा पूजा के लिए तैयार हुए विशेष एल्बम का हिस्सा था, लेकिन जब ये गाना सुपरहिट हुआ तो पंचम ने इसे अपनी हिंदी फिल्म में भी ले लिया। तो चले सुनते खूबसूरत सा सॉन्ग तुम बिन जाओ कहा।

यादों की बारात का आखिरी गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है तुमसे वो हसीना कभी मोहब्बत मैंने ना करनी थी। मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में ये सॉन्ग आपके लिए, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है। फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, पर तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, पर तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।